0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और सोफिया जमशेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खलील साहब, पाकिस्तान में रहते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी या साइकिल पार्क करना इस कदर दुश्वार होगा।
2: जी, और मजीद दुश्वार ये हो गया कि इस साल के यकुम अप्रैल से बाईसाइकिल के बारे में नए कवायद और जवाबित नाफिस हो गए। गाड़ी ही नहीं बल्कि साइकिल की गलत पार्किंग पर भी अच्छा खासा जुर्माना होता है।
0: चंद साल पहले हमारे हमसायों में से एक बच्चे की साइकिल गलत पार्किंग की वजह से जब्त हो गई। उसकी वालिदा पूरे 4,000 जन दे के साइकिल छुड़वा के लाई थी।
1: साइकिल हो या गाड़ी, कानून की पासदारी होगी अब जरूरी।
2: जी, और मैं तो भाई हमेशा ट्रेन पर सफर को तरजीह देती हूँ। ना ट्रैफिक में फंसे, ना पार्किंग का मसला, ना कोई चालान, कम खर्च, बाला नशीन।
0: अरे वाह, मेरी पसंदीदा सवारी भी ट्रेन ही है। हमारी बिल्डिंग में तो साइकिल की पार्किंग भी अलग से किराए पे लेना पड़ती है।
2: जी, और अगर आपने अपनी मुकर्ररा करदा जगह के अलावा कहीं साइकिल पार्क कर दी तो फिर शिकायत का इतना बड़ा सारा पर्चा आ जाता है।
0: शुक्र है मेरे लिए कभी नहीं आया।
1: हाँ, चूंकि आप साइकिल चलाती ही
2: नहीं। जी, इतराई है नहीं।
0: अच्छा, कुछ अच्छा पहले हमारे घर के नजदीक कम्युनिटी सेंटर की इमारत के अहाते में साइकिल पार्किंग वाली जगह पर अजीब से स्टैंड तामीर हुए। पता चला कि साइकिल शेयरिंग वाली सहूलत का एहतमाम हो रहा है।
1: साइकिल शेयरिंग मरकज? हमने तो साइकिलों वाली दुकान से किराए पर साइकिल लेने का सुना था ये।
2: जी खलील साहब, जापान में साइकिल किराए पर लेने के दो निज़ाम आम हैं। एक दुकान से साइकिल किराए पर लेना और दूसरा साइकिल पोर्ट से साइकिल शेयरिंग।
0: साइकिल शेयरिंग सिस्टम बड़ा जदीद निज़ाम है। इसमें आप शेयर करदा या शेयर शुदा साइकिल को साइकिल सर्विस की एक सहूलत से एक पोर्ट से लेकर किराए पे लेते हैं और फिर इसे किसी भी दूसरी पोर्ट पे या अड्डे पे वापस कर सकते हैं।
2: इसके लिए आमतौर पर स्मार्टफोन ऐप इस्तेमाल की जाती है। इसी के जरिए बाइक को इन लॉक किया करते हैं। फिर आम साइकिलों के अलावा बहुत सी शेयर बाइक्स यानी बैटरी वगैरह से चलने वाली मोटर से लगी हुई साइकिलें होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलाना आसान होता है। ये शहरों में मुख्तसर दौरों या फिर सयाहती मकासद के लिए एक आसान ऑप्शन है।
1: अच्छा,
0: यकम अप्रैल 2026 के आदाद शुमार के मुताबिक टोक्यो के सिर्फ मिनातो इलाके में ही 204 साइकिल पोर्ट्स हैं और मेरा ख्याल है कि इलाके की तकरीबन हर सड़क पर साइकिल पोर्ट है। माफ़ कीजिएगा, मुझे सिर्फ अपने मोहल्ले का पता है, उसी का बताऊंगी। तो हमारे शहर में तो हमारे मोहल्ले में तो काफ़ी सियाह इसको शहर भर में इस्तेमाल करते हैं ये सहूलत। साइकिल पोर्ट्स की एक खसूसी वेबसाइट होती है जिस पर आप करीब तरीन साइकिल पोर्ट का पता चला सकते हैं और फिर किसी भी पोर्ट पर दस्तियाब साइकिलों की तादाद, बैटरी की सूरत हाल, कोई एप्लीकेशन के ज़रिए ऑन टाइम तस्दीक हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास हो, स्मार्टफोन आपके पास हो।
1: अच्छा, ज़ाहिर है एप्लीकेशन इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए कार्ड और स्मार्टफोन का होना तो नागुजीर है ना इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाने के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बताएंगे साइकिल किराए पर लेने के बारे में। ये साइकिल आमतौर पर किसी दुकान, होटल या सयाहती मरकज से किराए पर ली जाती है। ज़्यादातर सूरतों में आपको बाइक को उसी जगह वापस करना पड़ता है जहाँ से आपने उसे किराए पर लिया था। किराए की फीस घंटावार या दिन के हिसाब से ली जा सकती है और न सिर्फ साइकिल, मोटरसाइकिलों और मोटर वाली ई स्कूटी पर किराए पर ली जा सकती हैं।
0: अरे, सिर्फ साइकिल पोर्ट्स ही नहीं बढ़ी बल्कि उनके जो हैं इकसाम भी बढ़ गई हैं।
1: अच्छा, साइकिल हो या किक बाइक हो, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे ख्याल में यह है कि ये माहौल दोस्त होते हैं। ना कोई ईंधन का खर्च, ना जहरीली गैसों का अखराज, जैसे आपने कहा, कम खर्च, बाला नशीन।
0: मैंने जी आज बार बार कहा।
2: अच्छा, साइकिल का इस्तेमाल बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर मकामात पर साइकिलों के लिए अलग लेन ना होने की वजह से पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात भी हुई हैं।
0: इसीलिए तो यकम अप्रैल से साइकिल सवारों के लिए पहले से जवायद पहले से सख्त हो गए हैं। अभी पहले भी सूफिया ने बताया, आज
1: जवायद सख्त हो गए हैं। बिल्कुल, और साइकिल की सवारी तो हमने मेरे ख्याल में कर ली है, तो अब क्यों ना गाड़ी किराए पर लेने का तरीका भी मालूम कर ही लें।
2: जी जी, जापान में गाड़ी किराए पर लेने के लिए आपके पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी, जापान में किराए की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर हिरागाना हरूफ वा या रे लिखे होते हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है।
1: अच्छा, मेरे पास बिल्कुल दुरुस्त जापानी लाइसेंस अगर मौजूद है तो क्या मैं भी गाड़ी ले सकता हूँ किराए पे?
0: जापानी लाइसेंस वाले तो ज़रूर ले सकते हैं, इसके अलावा गैर मुल्की सियाह भी गाड़ी किराए पर ले सकते हैं, पर इसकी जो शराइत हैं हर कंपनी के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अक्सर सूरतों में एक दुरुस्त बैन अल-अक़वामी ड्राइविंग परमिट और पासपोर्ट पेश करके गाड़ी किराए पर ले जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ड्राइविंग लाइसेंस उस मुल्क का होना चाहिए जो ड्राइविंग लाइसेंसों के बैन अल-अक़वामी माहदे में शामिल हो।
2: मेरी एक दोस्त हमेशा रेंटल कार की सर्विस इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी लेने के लिए एक खास एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करते हैं।
1: ज़रूर ऐसा ही होगा। वैसे सामीन, वसीमा साहिबा जैसे साइकिल नहीं चलाती वैसे ही ड्राइविंग से भी माशाल्लाह फारिग हैं।
2: लेकिन जुबान खूब चलाती हैं, बच के
1: और अब सफर पर निकलने के मौजूद पर गीत भी सुनिए। तो हमारे प्रोड्यूसर कामयामा साहब ने ये गीत मुंतखब किया है, और इस गीत को सुनवाने से पहले कहते हैं कि गर्मियों का मौसम सफ़र के लिए अच्छा और यादगार मौसम है ना। मेरा तो नक्शा खोलकर साइकिल चलाने को और शहरों या देहातों में घूमने को दिल चाहता है।
2: बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई जब कभी आप अनजाने या नए रास्तों पर सफ़र करने जाते हैं तो आपको नक्शे की मदद से रास्ता तलाश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नक्शा देखते हुए सफ़र के बारे में सोचना भी बड़ा दिलचस्प है।
0: कामयामा साहब पूछ रहे हैं सामीन आपसे कि क्या आपने कभी नक्शे के साथ ख्याली सफ़र का मनसूबा बनाया है? फिर कहते हैं, जब आप किराए की गाड़ी या साइकिल लेने के लिए तैयार होते हैं तो क्या आप अपने नक्शे के साथ गर्मियों की अपनी मुहिम पर या सफ़र पर निकलते हैं?
1: तो आज हम कामयामा साहब का मुंतखब करदा नयो स्काई नयो मैप यानी उफुक ताज़ा और नया नक्शा मुतारिफ करवा रहे हैं।
2: ये निजी गासा की हाई स्कूल आइडल क्लब ने पेश किया है। ये एनिमे सीरीज लव लाइफ निजी गासे की हाई स्कूल आइडल क्लब का ग्रुप है।
0: 2020 में रिलीज होने वाला ये गाना उसके सीजन एक या सीजन वन या सीजन अव्वल का इख्तितामी गाना है। इस एनिमे में स्कूल की लड़कियां आइडल सरगर्मियां करती हैं, रक्स और गाने को स्कूल क्लब के तौर पर पेश करती हैं, और ये ड्रामा उनके और नौजवानों के रवाबत को दिखाता है।
1: गाने के बोल कहते हैं, जब आप घूमते हैं तो आपको कुछ आने वाला महसूस होता है। आसमान दिन ब दिन मौसम बमौसम बदलता रहा, परेशान ना हो, लेकिन जो कुछ आपको पसंद है उसका लुत्फ उठाएं। किसी भी किस्म के मुस्तकबिल में अगर हम एक साथ मुस्कुरा रहे हों तो मुझे खुशी होगी। तो आइए सिर्फ एक अपना नक्शा लेकर जाते हैं। हम ख्वाब देखने को पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ख्वाब देखेंगे।
2: तो हमारे सामेईन इस गाने को सुनकर खुशगवार सफर करें। नक्शा कभी कभार किसी शख्स के मुस्तकबिल की अलामत होता है।
0: इतालवी जुमले ताबुला रासा यानी खाली तख्ती या कोरा कागज का मतलब है कि आपके सामने हर तरह के इम्कानात हो सकते हैं। अपने सफेद नक्शे में अपने रंग भर सकते हैं और शानदार गर्मियों की शानदार यादें तश्कील कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस गीत को पसंद करेंगे, तो आइए सुनते हैं।

0: जी सामिन, गीत ने स्काई ने मैप आपने सुना, कैसा लगा?
1: मुझे तो बहुत पसंद आया। और अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल मेरा पसंदीदा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे पेश करते हैं।
0: आज का मुहावरा है कहो ओ नित्ते माते, माफ कीजिएगा, कहो व नित्ते माते।
2: इसका लफ्जी मतलब है नतीजा आने या इनाम मिलने के इंतजार करने के दौरान नींद।
1: चूंकि किस्मत इंसान के बस से बाहर होती है, इसलिए बेहतर है कि जल्दबाजी या जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि सही मौके का सुकून से इंतजार किया जाए।
0: जी, ये है इस मुहावरे का इस्तलाही मानी। और इसमें लफ्ज का हो यानी इनाम या बदला बुद्ध मत का तस्वुर है, जो उस इनाम की तरफ इशारा करता है जो किसी को पिछली जिंदगी के उसके अमाल के नतीजे में मौजूदा जिंदगी में मिलता है। इसका मतलब खुशकिस्मती मिलना भी है।
2: इस जुमले का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही या सुस्ती से काम किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी ताकत या वसाइल सर्फ करने के बाद इंसान को पुरसकून और मुस्तहकम जहन के साथ अच्छी खबर का सब्र से इंतजार करना चाहिए।
1: वाकई कामयाबी तो सब्र से इंतजार करने वालों को ही नसीब होती है।
0: हमारे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा।
2: बिल्कुल।
0: समीन, ये कहावत रवायती इरोहा कारुता मुहावरों में से एक है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
0: जी सामिन, आपको याद दिलाते चलें कि अप्रैल में हमने एक सिलसिले में जापान में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गैर मुल्की जुबानों में मुआवनत की फराहमी के बारे में बताना शुरू किया था। अब कुछ तातुल के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं।
2: किसी शख्स के शदीद अलील या जख्मी होने की सूरत में हंगामी नकल व हमल के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है। नई सीरीज में एम्बुलेंसों और हंगामी हालात में उन्हें इस्तेमाल करने के मौजूद तरीके के बारे में बताया जा रहा है।
1: इस सिलसिले की पहली किस्त में 5 अप्रैल को एम्बुलेंस सर्विस पर तवज्जो मरकूज करते हुए बताया गया था कि जापान में जब कभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए 119 पर टेलीफोन करें तो टेलीफोन ऑपरेटर जरूरी मालूमात हासिल करता है। ऐसे मौके पर टेलीफोन पर बात करते हुए तर्जुमे के निजी मराकज के जरिए बयख वक्त तर्जुमे की सहूलत भी दस्तियाब हो सकती है।
0: इस सिलसिले की आइंदा किस्त में फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की तय करदा गाइड फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक बताएंगे कि एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाए।
1: जापान में एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपको 119 डायल करना है।
2: अच्छा, चाहे जापान के किसी भी शहर में हो यही नंबर है?
0: जी जी बिल्कुल, एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन पे बस आपने डायल करना है 119-119। इससे आपका राबता मुकामी फायर डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस भिजवाने वाले ऑपरेटर से हो जाएगा।
1: अच्छा, टेलीफोन पर फायर डिपार्टमेंट से राबता होगा?
0: हाँ हाँ, असल में वो भी आपको वजाहत करती हूँ। तो एम्बुलेंस भिजवाने के लिए ऑपरेटर आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछेगा, इसलिए आप एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाब दीजिए।
2: आपको कुछ मालूम है किस किस्म के सवालात वो पूछते हैं?
0: सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि क्या ये हंगामी सूरत हाल फायर यानी आतिश जदगी की वजह से है, यानी कि फायर डिपार्टमेंट को किया ना, तो वो ये पूछेगा। तो वो फिर दूसरा पूछेगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी यानी हंगामी नौयत का तिब्बी मसला है, लिहाजा आपने जवाब देना है मेडिकल इमरजेंसी।
1: अच्छा, उसके बाद
0: आपका एड्रेस पूछा जाएगा।
2: और अगर एड्रेस याद ना हो? मुझे तो अपना पता जापान का अब भी याद नहीं है।
0: जेब में रखिएगा लिख। वैसे ऐसी सूरत में किसी नज़दीकी चौराहे या इमारत या काबिले शनाख्त मकाम के बारे में मालूमात मुहैया करें।
1: अच्छा, मुझे याद है कि एक बार मुझे बाहर किसी शख्स के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। चूंकि वो सड़क थी तो ऑपरेटर ने मुझे ये पूछा कि नज़दीकी यूटिलिटी के खम्भे पर लिखा हुआ नंबर बताएं।
0: हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है और इससे भी लोकेशन आसानी से पता चल सकती है। फिर ऑपरेटर बीमार शख्स का नाम, उसकी उम्र और मर्ज की इलामत जाहिर होने का वक्त पूछेगा। और हाँ, ऑपरेटर आपसे आपका टेलीफोन नंबर भी पूछेगा, इसलिए ऐसा नंबर बताना है जिस पर आप फौरी तौर पर उस वक्त दस्तियाब हों।
1: اچھا یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسی فوری نوعیت کی ہنگامی صورتحال ہو جس میں ایمبولنس جلد از جلد پہنچنا ضروری ہو اور سوالات جواب دینے میں تاخیر ہونے کا احتمال ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایمبولنس بھجوا دی جائے گی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں گھبرانا نہیں ہے، ہوش و حواس قائم رکھنے ہیں، تحمل اور سکون کے ساتھ سب باتیں بتانی ہیں۔
2: چلیے سامعین، یہ تھیں جاپان میں ایمبولنس بلانے کے متعلق معلومات۔ مزید معلومات آئندہ ہفتوں میں نشر کی جائیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ جاپان میں ایمبولنس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 119۔
0: اور آج کل تو سامعین گرمی جاپان میں اس قدر زیادہ ہے اور جو کہ عام ہر سال زیادہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ کیا، بچے کیا، اچھا خاصا نوجوان بھی لو لگنے سے بیمار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ خدشہ کھلی دھوپ میں یا کھلے مقام میں، آپ کہیں باہر ہوتے ہیں تو وہاں یہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل یوں ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے ایمبولینسز کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔
2: اکثر میں بھی جب بازار میں جاتا ہوں تو ایمبولینسوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اکثر میرے خیال میں لوگ لو لگنے کی وجہ سے ہی سفر کرتے ہیں۔
0: جی جی بالکل
1: جی۔ اور
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے تو صوفیہ ہمیں کیا بتائیں گی، لیکن جی خلیل صاحب کو پہلے بتانے دیں۔
1: جی جی جی۔
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں،
0: جو ابھی کوئز شروع ہوا ہے، جاپانی زبان دانی۔
2: جی جی بالکل۔ اور اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں یہ جواب بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام سننے اور اپنی آرا دینے کے لیے آپ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس یاد رکھیں، nhk.jp/اردو۔
1: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے۔
0: جی سامعین، اب اپنے میزبانوں صوفیہ جمشید، خلیل شیرازی، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मन पसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिच्चिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिच्चिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और साथ ही लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: कामायनी जी, क्या आप किसी तरह के स्पोर्ट्स या खेल कूद में रुचि रखती हैं?
1: अरे आपने तो मेरे मनपसंद का विषय छेड़ लिया। हालांकि काम की व्यस्तता के बीच आजकल तो सिर्फ जिम ही जाने का अवसर मिलता है, लेकिन स्कूल कॉलेज के जमाने में कई तरह के खेलों में हिस्सा लिया करती थी। आप बताएं, आप किस तरह के खेलों से जुड़ी थी?
0: देखिए, बचपन में तो आप ही की तरह हर तरह का खेल खेला करती थी, लेकिन मैंने तो कंचे, कबड्डी और खो खो जैसे खेल भी खेले।
1: मैंने भी।
0: अब देखिए, खेलने का इतना समय नहीं है, पर टीवी पर देखकर आनंद ले लेती हूँ।
1: वैसे आप पत्रों के बीच ये खेल कूद की बातें कहाँ से आ गई?
0: असल में 19 अगस्त को टोक्यो में एशिया

0: खेलों की अग्नि प्रज्वलित की गई और अब देश के अलग अलग शहरों में मशाल को घुमाया जाएगा। इसके बाद 19 सितंबर को आईची प्रिफेक्चर के नागोया शहर में 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ होगा।
1: अरे वाह, टोक्यो ओलंपिक के बाद एक और वैश्विक खेल आयोजन।
0: जी
1: जानती है, जापान तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। पहली बार 1958 में टोक्यो में आयोजन हुआ, उसके बाद 1994 में हिरोशिमा में,
0: और हाँ 1951 में भारत ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तब से अब तक खेलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, हर बार कुछ नए खेल शामिल किए जाते हैं।
1: करीब एक महीने बाद शुरू हो रहे इन खेलों को लेकर मैं तो बहुत बहुत उत्साहित हूँ।
0: जी मैं भी। भारत और जापान दोनों देशों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल मेरी नजर है श्रोता मित्रों के पत्रों पर।
1: अरे आपके कहने से पहले ही देखिए मैंने ये पत्र उठा लिया है। पत्रों की शुरुआत एक शिकायत से करूं?
0: कोई बात नहीं, शिकायत हो या तारीफ, हम सबके लिए तैयार रहते हैं। फिर गिला शिकवा आखिर अपनों से ही तो होती है।
1: जी,
0: बताइए हमारे किस पत्र को हमसे शिकायत हो गई?
1: शिकायत करने वाले श्रोता हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी।
0: आजमी साहब ने बहुत अंतराल के बाद खत लिखा है, तो अलबत्ता हमें शिकायत होनी चाहिए।
1: जी
0: लेकिन बताइए क्या लिखते हैं?
1: लिखते हैं, आदाब, दिनांक 16 अगस्त के चरे के देश से सुनने के उपरांत आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। विगत दिनों एक पत्र लिखा था जिसका उत्तर नहीं दिया गया, शायद लंबे अंतराल की उपस्थिति के एवज गुस्से की भड़कती ज्वाला ने उसे राख में तब्दील कर कूड़ेदान की नजर कर दिया हो। खैर, कारण जो भी हो, हम तो कार्यक्रम सुनना एवं पत्र लिखना नहीं छोड़ेंगे।
0: आजमी साहब, अव्वल तो हम किसी भी मित्रगण का खत कूड़ेदान में नहीं डालते, हर एक का जवाब देते हैं। हाँ, कभी कभार विलंब जरूर हो सकता है। जहाँ तक बात आपके पत्र की है, तो हमने अपने डाटा को खंगाला है और आपका आखिरी पत्र हमें 20 अप्रैल को मिला था, जिसे हमने 10 मई के चेरी के देश से कार्यक्रम में शामिल भी किया। आपने अपने उक्त पत्र में पंकज त्रिपाठी जी के साथ हुई भेंट वार्ता को पसंद करने की बात लिखी थी।
1: हो सकता है आपका सुनना छूट गया हो। आप हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम जरूर सुने, तो यकीन माने आपको आपका पत्र सुनने का अवसर जरूर मिलेगा।
0: और साथ में हर सप्ताह पत्र भी लिखें।
1: हाँ, और साथ में हर सप्ताह पत्र भी लिखें। और आजमी साहब आगे लिखते हैं, भाई सुरेश अग्रवाल जी के मायूस दिल को आश्वासन देना चाहूंगा, NHK बुलाए या ना बुलाए, जीवन में अवसर मिला तो हम दोनों एक साथ अवश्य जापान का भ्रमण करेंगे।
0: जरूर जरूर पधारे, हम सभी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं।
1: जी, आजमी साहब ने एक श्रोता मित्र के सवाल के उत्तर में जापान की ट्रेन यातायात व्यवस्था, कार्य प्रणाली, समय की पाबंदी से लेकर साफ सफाई पर विस्तार से मिली जानकारी को पसंद किया है। वे चाहते हैं कि आगामी दिनों में जापान की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन पर विशेष रिपोर्ट सुनवाई जाए, जिसमें उसकी सभी गतिविधियों को उजागर कर उसके रखरखाव से लेकर उसके जनक तक के उद्देश्यों को पेश किया जाए, और अगर वो मौजूद हों तो उनकी जुबानी उनके विचारों को पेश किया जाए। और क्या जापान में रेल किराया किलोमीटर से या दूरी के हिसाब से तय किया जाता है? और कुछ इतिहास की तिजोरी से जानकारी साझा किया जाए, जैसे जापान में पहली ट्रेन कब दौड़ी आदि आदि।
0: वाह आजमी साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। जापान में सबसे पहली ट्रेन 14 अक्टूबर 1872 में टोक्यो के शिम्बाशी स्टेशन से योकोहामा शहर तक चली, यानी करीब 150 साल पहले पहली ट्रेन चली थी। ये करीब 29 किलोमीटर का रास्ता था। ये जापान का औद्योगिकीकरण का दौर था, और सबसे मजे की बात यह है कि आम जन को ट्रेनों में बैठने और उसमें वहाँ के शिष्टाचार का बकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया था।
1: अरे वाह, उस जमाने में भी इन बातों का ध्यान रखा गया था। जहाँ तक बात ट्रेन टिकट के किराए की है, तो ये यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है।
0: जी हाँ, जितनी लंबी यात्रा उतना ही अधिक किराया।
1: लेकिन अगर लिमिटेड या एक्सप्रेस ट्रेन यानी द्रुत गति की ट्रेन लेंगे या सीट रिजर्व्ड होगी तो एक्स्ट्रा पैसा आपको देना होगा। वैसे तो शिंकानसेन आदि में यात्रा से एक महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती है।
0: वही यहाँ पर तत्काल टिकट खरीदने पर टिकट का मूल्य दुगना या तिगना भी नहीं होता। अच्छा, एक बात और है, लोकल ट्रेन में एक दिन का पास जैसी व्यवस्था भी है जो काफी फायदेमंद हो जाती है। इसके अलावा ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए मासिक पास जैसी सुविधा होती है जो काफी रियायती होता है। वहीं स्टूडेंट पास तो और भी सस्ता हो जाता है।
1: बात जब स्कूली बच्चों की उठी है तो जब मैं जापान में नई नई आई थी ना तो पहली दूसरी कक्षा के छोटे छोटे स्कूली बच्चों को ट्रेन में अकेले घर से स्कूल आते जाते देखकर दंग रह जाया करती थी।
0: जी देखिए, बच्चों के लिए यहाँ ट्रेनें बहुत ही सुरक्षित हैं। मेरे खुद के बच्चे भी ट्रेन से ही स्कूल आते जाते थे। यहाँ भारत जैसी स्कूली बस सेवाएं काफी कम है। अच्छा, एक कमाई नहीं, एक बड़ा मजेदार वाक्य याद आया। जब मैं शुरू में जापान आई थी तो मुझे क्योटो जाने का मौका मिला था। सुबह सुबह की शिंकानसेन ट्रेन थी जो स्टेशन पहुंचने पर मेरी आंखों के सामने टाटा बाय बाय करती हुई ओझल हो गई। काफी घबराहट हुई कि अब अगली ट्रेन जाने कितने घंटों बाद मिलेगी। लेकिन टीसी ने कहा अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, नॉन रिजर्व डब्बे में तुरंत बैठ जाओ। यानी हर 5 मिनट में शिंकानसेन मिल गई।
1: बहुत अच्छा। उम्मीद है आजमी साहब आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, हम एक बार फिर याद दिला दें कि हमारी वेबसाइट पर जापानी रेल सेवा के बारे में काफ़ी वीडियो हैं, जिस श्रृंखला का नाम है जापान रेलवे जर्नल, जिनसे आपको और जानकारी मिल जाएगी यहाँ की ट्रेन व्यवस्था के बारे में। और अब देखिए, समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: कार्यक्रम चेरी की देश से में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये अगला पत्र है पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान से प्रदीप बसाक का।
1: काफी लंबा पत्र दिख रहा है।
0: जी हाँ, प्रदीप जी अक्सर अपने विचार विस्तार से रखते हैं। लिखते हैं, हाल ही में मुझे जापान के अकीता प्रिफेक्चर के अकीता शहर में आयोजित पारंपरिक अकीता कांतो महोत्सव का वीडियो देखने का अवसर मिला। सच कहूँ तो इस अद्भुत वीडियो ने मेरे मन को गहराई से छू लिया। कागज की रंग बिरंगी लालटेन से सजे लंबे बांस के खम्भों का अद्भुत प्रदर्शन, प्रतिभागियों का संतुलन, कौशल, अनुशासन और उत्साह देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगा मानो मैं स्वयं उस उत्सव स्थल पर उपस्थित होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बन रहा हूँ। मैंने उस उत्सव की जीवंतता और आनंद को अपने हृदय से महसूस किया। ये जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हुई कि लगभग 250 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा वाले इस अकीता कांतो महोत्सव को जापान सरकार ने महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा और विरासत होती है। जापान जिस समर्पण और सम्मान के साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है, वह वास्तव में पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है।
1: प्रदीप जी आगे लिखते हैं, सैकड़ों कागजी लालटेनों से सजे विशाल बांस के खंभों को कलाकारों द्वारा अपने हाथों, कंधों और माथे पर अद्भुत संतुलन के साथ संभालते हुए देखा, तब मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि वर्षों के अभ्यास, धैर्य, आत्मविश्वास और सामूहिक समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि मुझे कभी इस महोत्सव को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता तो वो मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय स्मृतियों में से एक होती।
0: प्रदीप जी को ये जानकर भी अच्छा लगा कि इस वर्ष लगभग 70 स्थानीय दलों और विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों ने इस महोत्सव में भाग लिया तथा 4 दिनों तक कुल 273 लालटेन खम्भों का प्रदर्शन किया गया। ये दर्शाता है कि जब पूरा समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एकजुट होता है तब परंपराएं सदियों तक जीवित रहती हैं। हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हमें भी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को ऐसा ही सम्मान और संरक्षण देना चाहिए। इस वीडियो ने न केवल एक सुंदर उत्सव का दृश्य दिखाया बल्कि जापानी समाज की अनुशासन प्रियता, सांस्कृतिक चेतना, परिश्रम और सामूहिक एकता का भी उत्कृष्ट परिचय कराया। ऐसे आयोजन विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने, सम्मान देने और अपनाने का अवसर देते हैं। संस्कृति वास्तव में मानव को जोड़ने वाली सबसे सुंदर कड़ी है। मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: मुझे लगता है कि प्रदीप जी सचमुच इस वीडियो से बहुत मोहित हुए हैं।
0: जी, पर ये वीडियो है भी बहुत हैरतअंगेज और सुंदर। कभी मौका मिला तो मैं भी इस महोत्सव को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहूंगी। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, वाकई हैरतअंगेज है।
1: यही नहीं, हमारी वेबसाइट और फेसबुक दोनों पर जापान में हो रही अलग अलग मात्सुरियों की ढेर सारी वीडियो है, उन्हें भी जरूर देखिए और बताएं आपको कैसी लगी। और देखिए शंग्रिला जी, अब इस अगले पत्र में किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल लिखते हैं, 16 अगस्त के कार्यक्रम में सबसे पहले मेरे प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन करने हेतु विशाखापत्तनम के श्रोता मित्र RS विजय कुमार जी का आपके माध्यम से हृदय तल से आभार। जापान जाने का मौका मिले या न मिले, उनके उद्गार मेरे लिए मायने रखते हैं। आज के अंक की शुरुआत में आपने दैनिक जीवन में देश प्रेम के जज्बे के बारे में जानना चाहा है। सो मेरी राय में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर हम सभी के भीतर देश प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और देश के वीरों को याद करते हैं, लेकिन सच्चा देश प्रेम केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसका वास्तविक रूप हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए।
0: सुरेश जी ने देशभक्ति दिखाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। दिखते हैं, ईमानदारी से अपना काम करना, कानून और यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और स्वच्छता बनाए रखना भी देश प्रेम है। पानी बिजली की बचत, पर्यावरण की रक्षा और स्थानीय कारीगरों व भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना भी देश की प्रगति में योगदान है। देश प्रेम का एक महत्वपूर्ण रूप यह भी है कि हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदों से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक का सम्मान करें, सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के अफवाहें न फैलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। बच्चों में ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति सम्मान के संस्कार डालना भी सच्ची देश सेवा है। वास्तव में देश प्रेम किसी विशेष दिन का प्रदर्शन नहीं बल्कि हर दिन सही काम करने की आदत है। हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, समाज को बेहतर बनाएं और देश की एकता तथा प्रगति में अपना योगदान दें। यही हमारे राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और देश प्रेम है। देश प्रेम केवल सीमा पर बलिदान देने से नहीं बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने में भी है।
1: वाकई सारे सुझाव ना सही, इनमें कुछ बातें भी अगर हम अपना लें तो हम देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जानती हैं शंकरला जी, मेरे पिताजी को कमरे में फालतू पंखा बत्ती चलते देख या टपकते नल देखकर झुंझलाहट हुआ करती थी, इसके लिए वे हमें टोकते थे।
0: मेरे पिताजी को भी ऐसी बात थी और यही आदत अब मुझ में भी आ गई है, मैं भी हमेशा टोकती रहती हूँ बच्चों को। और
1: देखिए, हाँ, फेसबुक पर उमेश कुमार शर्मा ने एक कमेंट भेजा है एक वीडियो के लिए, जिसमें भारतीय और जापानी समुदाय के मेलजोल के आयोजित कार्यक्रम के वीडियो पर लिखा है, आपके द्वारा पेश जानकारी से अवगत कराया गया कि जापान में भारतीय परिवार का दैनिक जीवन व्यतीत करने का तरीका क्या है। इस जानकारी से ये स्पष्ट है कि जापानी लोग बहुत अधिक मिलनसार हैं। इस पूरी जानकारी के लिए आपका साधुवाद।
0: उमेश कुमार जी, कमेंट के लिए धन्यवाद। और कमायनी जी, देखिए ना, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। टिकटिकी रानी हमें टिकटिकी लगाकर देख रही है।
1: सचमुच श्रोता मित्रों से बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन जाने से पहले कोई गीत सुन लिया जाए।
0: जरूर जरूर, कौन सा गीत लेकर आई है
1: आज के इस गीत में? बोल नहीं है, सिर्फ साज है।
0: अच्छा।
1: हाँ, गर्मी के दिनों में ये मधुर संगीत दिल को सुकून देता है। हिसाइशी जो का गीत है समर। जानती है, हिसाइशी जो मियाज़ाकी हायाओ की एनिमेशन फिल्मों को संगीत देने के लिए बहुत मशहूर हैं। उन्हीं का ये गीत है समर।

0: मित्रों, आप गीत का आनंद लें और NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।